खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों का इस अवसर पर यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने कहा था कि इस सदी की चुनौतियों के भारत को आगे आना होगा। गर्व से कह सकता हूं कि इनिशिएटिव उसी दशा में एक कदम है। भारत इनोवेट्स का ये मंच भारत के टैलेंट और यूरोपियन कैपिटल के बीच एक ब्रिज बन रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत के यंग माइंड्स को

स्टडीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। साथियों, आज 21वीं भारत में एक स्टार्टअप है। इस रिवॉल्यूशन में भारत एक नए माइंडसेट, मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स। आईआईटी दिल्ली के बोर्ड के चेयरपर्सन मेरे मित्र हरीश सालवे जी ने इसके आयोजन में बड़ा योगदान दिया है और इस आज यहां इन संख्या में एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं। आप भारत के भविष्य की झलक दिखती है, आपको भारत के युवाओं का आत्मविश्वास दिखाई देता है, आपको नए भारत की ऊर्जा दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जो सॉल्यूशंस का कंज्यूमर नहीं, सॉल्यूशंस का कंट्रीब्यूटर बनकर के उभरा है। यहां कोई एआई से गांवों का जीवन बदलने के लिए काम कर रहा है, कोई एडवांस और नए मटेरियल से भरना है, कोई ग्रीन हाइड्रोजन एबिलिटी से एक सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित कर रहा है और कुछ स्टार्टअप्स डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत इनोवेट्स विद स्केल एंड स्पीड, भारत इनोवेट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड भारत इनोवेट फॉर द होल वर्ल्ड। इस कार्यक्रम का हिस्सा मैं उनके सामने विशेष तौर पर भारत से आए इन नौजवान साथियों की प्रशंसा करूंगा। यहां जितने आए उन्होंने पुराने रास्ते चलने की बजाय उसको छोड़ करके उन्होंने एक नई जगह का रास्ता चुना है, एक नई लीक बनाई है और यहां आप सबको 100 सवा 100 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है और अब ये सारे स्टार्टअप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दुनिया के लिए यह डिसरप्शन डेवलपमेंट दोनों का है और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्व एक अभूतपूर्व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, लेकिन आज मानवता के सामने जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां ज्यादा हैं तो अवसर भी उतने ही ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी है जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ह्यूमन सिविलाइजेशन सेक्टर है, हर टेक्नोलॉजी एक नया अवसर देता है और हर अवसर एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आता है। आज दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो, जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो। और ऐसे समय में ह्यूमन सेंट्रिक साथियों,

तंत्र हमारे डिजिटल रहा है, आपके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है, हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है, एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट की थीम भी यही थी। साथियों, भारत ने दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन के उसके वैल्यूएशन में होती, उसकी महानता ह्यूमन इंपैक्ट में होती है। यही भारत इनोवेट्स की भावना है, यही भारत का दृष्टिकोण है। यहां मौजूद स्टार्टअप जगत के साथ आप सभी साथियों के लिए भी ये उतनी ही बड़ी प्रेरणा है। फ्रेंड्स, इनोवेशन इज इन इंडिया डीएनए। हजारों मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, योगा तक, संपूर्ण प्रगति का आधार रहा है। आज हम इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है। साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन है। कई शहरों तक सीमित नहीं है, हमने इनोवेशन को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए हैं, युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है। पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। इसके कारण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है। आज ड्रोन दीदी से लेकर स्टार्टअप के फाउंडर बनने हमारी विमेन पावर नई सक्सेस हुई है। साथियों, नौजवानों की इसी एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इनोवेशन के लिए खोला गया है। आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी लगातार चलती रहेगी और निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी, आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, भारत इनोवेट्स मार्केट का भी है। भारत इज एन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड टू को नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेशन विथ इंडिया।